0: नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। 107 FM रेनबो पर मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर चटपटा सा कार्यक्रम।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर,
0: जी हाँ, नॉन स्टॉप गपशप है कार्यक्रम का नाम और मैं हूँ पापिया आपके साथ। तो चलिए, सबसे पहले गपशप के पहले गाने की शुरुआत करने से पहले आज के वेदर का हाल चाल जान लेते। कल जबरदस्त बारिश तो हुई हमारे शहर कोलकाता में। फिलहाल आज मौसम विभाग क्या कहता है? मौसम विभाग ये कहता है कि आज भी बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश होने की गुंजाइश पूरी बताई जा रही है। साथ और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की गुंजाइश है। अधिकतम तापमान अगर कल की बात करें तो अधिकतम तापमान रहा 33.7 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 0.7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम था। अधिकतम नमी 98% रही और न्यूनतम नमी 69% रही और बारिश 62.1 मिलीमीटर के करीब हुई थी। साथ ही साथ आने वाले 2-3 घंटों में दक्षिण दिनाजपुर के कुछ ज़िलों में भी ज़बरदस्त बारिश होने वाली है। तो जो दोस्त हमारे वहाँ से सुन रहे हैं, वो प्लीज़ जब भी बाहर निकले तो पूरी पूरी एहतियात बरतते हुए पूरी सावधानी के साथ बाहर निकले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वेदर का हाल चाल तो ले लिया, अब थोड़ा गाने में भी बारिश की बात कर लिए जाए।

0: तो चलिए अब जान लेते हैं कोलकाता में आसपास क्या हुआ।
1: कोलकाता कल्चर।
0: दोस्तों, प्रधानमंत्री योग के शांत और तनाव मुक्त जीवन जीने में सहायक बताते हुए कल कोलकाता में काफ़ी कुछ हमारे यहाँ पे हुई। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य समारोह का आयोजन रविवार को यहाँ रेड रोड पर आयोजित किया गया था, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री ने की। रेड रोड में प्रधानमंत्री ने खुद योगासन किए, साथ ही वहाँ उपस्थित लोगों को भी योग के गुण सिखाते हुए नजर आए। इसी तरह से देश के प्रधानमंत्री ने योग प्रशिक्षक की भूमिका में भी देखा गया। और इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि हम हेल्दी एजिंग यानी उम्र बढ़ने के साथ सेहतमंद रहने के लिए योग की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर सकते हैं कि उम्र बढ़ने की इंसान की क्षमता बिल्कुल भी कम ना हो। फिलहाल के लिए कोलकाता कल्चर में आज बस इतना ही।
1: कोलकाता कल्चर।
0: तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक चुटकी नुस्खे की ओर सीधे जाएंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे हमारा अगला गाना भी।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: एक चुटकी नुस्खे।
2: तो 10:15 हो चुका है और बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की ओर, जो है एक चुटकी नुस्खे। और भाई, बारिश के फुहारे, मिट्टी की सौंधी खुशबू, गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों का स्वाद, मानसून का नाम सुनते ही मन खुश हो जाता है। लेकिन इस मौसम के साथ कुछ छोटी मोटी परेशानियां भी चलती रहती है। कपड़े सूखते नहीं, मच्छरों की फौज तैयार हो जाती है, छाते और रेनकोट की हालत खराब होने लगती है और त्वचा भी रूठने लगती है। तो आज के एक चुटकी नुस्खे में हम लेकर आए हैं मानसून के लिए कुछ बेहद काम के आसान और मजेदार उपाय, जिन्हें अपनाकर आप इस मौसम का भरपूर आनंद ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस समस्या की जिसे लगभग हर घर परेशान रहता है, वो है गीले कपड़े। बारिश के दिनों में कपड़े सुखाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। धूप मिलती नहीं और कपड़ों में नमी की वजह से बदबू आने लगती है। ऐसे में एक छोटा सा उपाय बहुत काम आता है। कपड़े धोने के बाद आखिर बार साफ पानी में थोड़ा सा सफ़ेद सरका मिला दीजिए। इससे कपड़ों में बदबू नहीं आएगी। अगर घर में सीलिंग फैन है तो कपड़ों को फैलाकर उसके नीचे टांग दें। कपड़ों को एक दूसरे से चिपका कर न रखें, वरना हवा पास नहीं होगी। और हाँ, एक और मज़ेदार उपाय, कपड़ों के पास एक सूखा तौलिया टांग दीजिए। तौलिया अतिरिक्त नमी को सूखने में मदद करता है। साथ ही साथ कपड़े पूरी तरह से सूखने से पहले अलमारी में रखने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फफूंदी और बदबू दोनों आपका स्वागत करने को बिल्कुल तैयार रहेंगे। अब बात करते हैं मानसून के अगले साथी की, छाते और रेनकोट की। पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे कि ये मानसून के सीजन में भी आप लोगों को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या करते हैं आप उनके उपाय, और सोचिए। और सोचते सोचते चलिए हम गाना सुन लेते हैं आश किंग और शशा तिरुपति की आवाज़ में।

0: दस बजकर 22 मिनट टाइम हो गया है और जो बात कर रहे थे कि बात करेंगे बसली साथी मानसून के छाते और रेनकोट की, अक्सर हम बारिश में से आते ही छाता मोड़ कर किसी कोने में रख देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, गीला छाता बंद करके रखना, उसमें जंग और फंगस यानी कि लग सकती है। घर पहुँचते ही छाते को पूरा खोल कर सूखने दें, जब वो पूरी तरह सूख जाए तभी मोड़ कर रखें। रेनकोट की सफाई के लिए तेज़ डिटर्जेंट का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हल्के साबुन वाले पानी से साफ करें और छाया में सुखाएं। सीधे धूप में रखने से उसका वाटरप्रूफ लेयर जो है वो जल्दी खराब हो सकता है। और एक और छोटा सा नुस्खा, बरसात शुरू होने से पहले छाते की सभी रॉड्स को जोड़कर एक बार चेक कर ले। छोटी खराबी समय रहते ठीक हो जाए तो बीच रास्ते में परेशानी बिल्कुल भी नहीं होती, क्यों है ना। तो इसी बात पर हमारे जो पहले कॉलर है वो हमारे लिए फोन लाइन पर इंतजार कर रही है कब से, चलिए देखते हैं कौन है। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉनस्टॉप गपशप में।
1: हाँ नमस्कार दीदी, আমি পায়েল বলছি বেলঘরিয়া থেকে।
0: হ্যাঁ পায়েল, কেমন হো আর ইস খুবসুরত মৌসুমে কেমন চলছে
1: দিদি? একটু একটুখানি আমিও খারাপ আছি, কারণ বৃষ্টিটা আমার পার্সোনালি খুব একটা পছন্দের না, মানে একটু মনটা খারাপ লাগে। কেন বলো তো?
0: কিউ?
1: কারণ বৃষ্টির সাথে না মানে মানুষের আবেগটা অনেক বেশি নাড়া দিয়ে যায়, বৃষ্টি মানুষের আবেগগুলোকে। হ্যাঁ সিরিয়াসলি বলছি, তাই আমার পার্সোনালি না বৃষ্টির দিনটা খুব একটা ভালো লাগে না, একটু মন টন খারাপ টাইপের লাগে।
0: মতলব আপ ইমোশনাল জাদা হো জাতি হ্যায়, পুরানি চিজে পুরানি ইয়াদে ইয়ে সব আপকো বড়ে তকলিফ দেতি হ্যায় মনসুন কে সাইন।
1: আর যদি বৃষ্টির দিনে আরো যে প্রবলেম গুলো আছে সেটা হচ্ছে আমাদের, ধরো তোমাদের মানে আমাদের মাথার উপরে একটা ছাদ রয়েছে, কিন্তু যাদের মাথার উপরে ছাদ জিনিসটা নেই তো তাদের কিন্তু বৃষ্টির দিনে খুবই কষ্ট। তারা জলের মধ্যে যেভাবে জীবন যাপন করে হয়তো খাবারটাও সে বৃষ্টির দিনে তারা ঠিক মতো পায় না, তো সেই ক্ষেত্রে বৃষ্টির দিনটা কিন্তু তাদের জন্য খুবই খারাপ। কিন্তু তবুও প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে একটা পজিটিভ ভাইবস তো আমাদের রাখতে লাগে, তো সেই কারণে দিদি আমি চারটে লাইন আমি বৃষ্টি সম্বন্ধে একটু বলতে চাই। ওকে, গানের খেয়া বাইতে এলে প্রাণের কারাবারে, অগ্নিশ বিনার সুর তুললে হৃদয় বিনার তারে, প্রাণের কালে লাগলো হাওয়া গানের সরোবরে, প্রাণের সুরে গান গাওয়া শুধু তোমারই তরে।
0: थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत लाइन्स थी और बड़ा मजा आया पायल। चलिए कोई बात नहीं, आपका मन मूड खराब होता है, लेकिन बाकी हमारे साथी जो हमारे श्रोतागण हैं उनसे सुनना चाहूंगी कि उनका मूड कैसा रहता है भाई बारिश के टाइम पे। खैर जो भी है पायल, कोई बात नहीं, मूड बिल्कुल खराब मत कीजिएगा, बिल्कुल मजे में रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मिलते रहिए हमें ऑन एयर। ओके चल मिलते हैं फिर, बाय। तो ये थे दोस्तों पायल, जिनका मूड खराब होता है बारिश के टाइम पे। और हाँ बिल्कुल, जो उन्होंने जो प्रॉब्लम एड्रेस किया वो बिल्कुल सही था, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हम में से कईयों के लिए शायद बारिश बड़ी खुशियाँ लेके आता है, लेकिन कुछ के लिए खुशियाँ खुशियों की बात नहीं होती है, शायद उनके रहने के खाने के भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बिल्कुल थैंक यू सो मच पायल एक बार फिर से। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए जैसा कि कहा कि बरसात में छातों का और रेनकोट का किस तरह से ख्याल रखें उस बारे में तो बात होगी, लेकिन बात है कि अब त्वचा का किस तरह से ख्याल रखा जाए इस बारे में भी बात जरूर करेंगे। पर उससे पहले अगला गाना सुन लेंगे बॉर्डर 2 से।

0: में नमी होने के कारण त्वचा पर धूल और बैक्टीरिया आसानी से चिपक जाते हैं, इसलिए दिन में दो बार चेहरा साफ करना बहुत जरूरी है। अगर बारिश में भीग जाए तो घर पहुंचते ही साफ पानी से चेहरा और हाथ पैर जरूर धो लें। भरपूर पानी पीना भी बहुत जरूरी है। मौसम ठंडा होने की वजह से हमें प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत बनी रहती है। और एक आसान सा घरेलू उपाय, खीरे का रस या गुलाब जल चेहरे पर लगाने से त्वचा तरोताजा महसूस करती है। और याद रखिए, गीले जूते मोजे लंबे समय तक पहने रहने से त्वचा संबंधी समस्याएं हो ही सकती है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द बदल देना बहुत ही जरूरी है। अब आते हैं उस मेहमान पर जो बिना बुलाए हर मॉनसून में आ जाता है, वो है मच्छर। पर उसे पहले ले लेंगे हमारा अगला फोन कॉल। हेलो,
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नॉनस्टॉप गपशप में।
1: थैंक यू। मैं शोभी सरकार बोल रहा हूँ कोलकाता से।
0: हाँ शोभी, हाँ शोभी, कैसे हो, सब ठीक ठाक?
1: मैं अच्छा हूँ, आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोगों की दुआ है। अच्छा शोभी, सबसे पहले मुझे बताओ कि गाना कौन सा सुनना चाहते हो इस वेदर में?
1: गुरु फिल्म से गाना है बरसोरे मेगा मेगा।
0: जी
1: हाँ, वो मैं गाना मैं सुनना चाह रहा हूँ।
0: ओके ठीक है, चलिए बताओ कि घर परिवार में सब ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है, काम वाम
1: एकदम ठीक ठाक है दीदी?
0: चलो,
1: आपने जो क्वेश्चन जो किया था, जो बारिश में जो होता है ना, मेरा मूड दो तरीके से होता है।
0: अच्छा।
1: देखिए जब मैं घर में जब रहता हूँ तभी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉफी मग हाथ लेकर बैल्कनी में बैठकर बारिश के सीन देखना बहुत बहुत मजा लगता है। इवनिंग टाइम में कोई पकौड़ा पकौड़ा हो तो, भेज पकौड़ा हो तो अच्छा से लेकर मैं बारिश के सीन देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। दूसरी जो सीन होता है वो अभी अभी होगा, और जब भी हम लोग ऑफिस में जाता हूँ तब भी कोई ना कोई दीदी कोई ना कोई दिक्कत होता है।
0: अच्छा।
1: देखता हूँ हाँ, कोई देखता हूँ जो वो बूट भी गिला हो जाता है, ड्रेस जो है वो गिला हो जाता है, वो बहुत दिक्कत होता है। और वो तो है ही कादे का जो पैच पैच वो हाँ, और वो सबसे बड़ा और भी दिक्कत होता है रिश्का व ऑटो जो भाड़ा है ना
0: वो बढ़ जाता है काफी। हाँ।
1: वो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि कल जब मैं एक वो जा रहा था वो जल हो गया था हम यहाँ घर में सामने हाथों की सामान जल हो गया था, रिश्का वाला जो भाड़ा जो होता है जो 20 रुपया वो ले रहे 30 रुपया 35 रुपया ऐसे ऐसे दाम एकदम बढ़ा देता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, किंतु ये बोर प्रॉब्लम हो जाता है दीदी, क्योंकि बारिश में दो तरीके से मेरा लगता है, एक घर में है तो बिंदास एकदम बहुत अच्छा लगता है, बाहर बिनाने के लिए तो एकदम मूड एकदम बांग्ला में जो बोलता है ना बांग्ला पांच हो जाता है।
0: चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल आज मंडे का दिन है तो शोभिक बारिश हो तो भी बांग्ला का पांच बना के मुंह ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा हमें, है ना?
1: ऑफिस में तो जाना ही पड़ेगा,
0: उपाय नहीं
1: पड़ेगा, उपाय नहीं है
0: भाई, पापी पेट का सवाल है भाई हमारे। तो फिलहाल एक काम करेंगे, अगर बारिश हो रही होती है, जैसे कि अभी फोरकास्ट है कि बारिश हो सकती है, तो कोई बात नहीं, ऑफिस में जाके एंजॉय कीजिएगा फिर बारिश, अगर अभी नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आपके ऑफिस पहुंचते पहुंचते अगर शुरू हो गया तो फिर ऑफिस जाके चाय पकौड़े के साथ डेफिनेटली एंजॉय कीजिएगा बारिश, बस मैं यही कहूंगी आपसे। ठीक है ठीक है, चलिए सुनवाते हैं आपका आपका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना आपको। ओके बाय, फिर मिलते हैं,
1: बाय बाय बाय, टाटा
0: बाय। तो ये थे शोभिक, जिनको होता है मूड फ्लक्चुएशन, घर पे एक तरह का मूड और बाहर एक और तरह का मूड, कोई बात नहीं, हम सबको होता है, हम में से बहुत लोग हैं जिनको बारिश में निकलना बिल्कुल पसंद नहीं होता, ये तो बिल्कुल सही बात है। फिलहाल उनके उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना जरूर सुनेंगे, पर उससे पहले बात कर लेंगे हमारे एक चुटकी नुस्खे के आखिरी कुछ टिप्स के बारे में। बरसात के दिनों में कहीं भी जमा पानी मच्छरों का घर बन सकता है, इसलिए कूलर, गमलों की ट्रे, बाल्टी और छत पर जमे पानी को नियमित जांच करते रहें। शाम के समय खिड़कियां बंद रखें कि कोशिश करें कि जाली का इस्तेमाल करें। और अगर आप घरेलू उपाय पसंद करते हैं तो नीम के सूखे पत्तों का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कई लोग शाम के समय कपूर जलाकर कमरे में रखते हैं, जिससे वातावरण ताज़ा महसूस होता है। और सबसे ज़रूरी बात, मच्छरों को पनपने का मौका ही मत दीजिए, रोकथाम हमेशा इलाज का आसान तरीका होता है। और अब अंत में चलिए मॉनसून में यात्रा की बात करते हैं। बारिश में सफर करना काफी रोमांचक तो होता है, लेकिन थोड़ी तैयारी भी मांगता है। घर से निकलने से पहले मौसम की

0: जानकारी जरूर देख ले। बैग में हमेशा एक छोटा सा फोल्डिंग छाता या हल्का रेनकोट जरूर रखें। मोबाइल और जरूरी दस्तावेजों को वाटरप्रूफ पाउच में रखने की आदत डालें। ये छोटी सी सावधानी बड़े नुस्खे से बचा सकती है। फिसलन वाले रास्तों पर जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ऐसे जूते पहने जिनकी पकड़ अच्छी हो, और अगर लंबी यात्रा है तो कपड़ों को एक अतिरिक्त सेट साथ में रखना हमेशा समझदारी होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बरसात में गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल स्पीड पर नियंत्रण रखें। कुछ मिनट देर से पहुंचे सुरक्षित पहुंचने से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता। तो दोस्तों, मॉनसून का मौसम सिर्फ बारिश का नहीं बल्कि सावधानी और समझदारी का भी मौसम है। छोटी छोटी आदतें और कुछ आसान नुस्खे इस मौसम को और भी सुहाना बना देते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी बारिशें खुशियाँ से भरी रहे, चाय की प्याली हमेशा गर्म रहे और मच्छर आपसे सुरक्षित दूरी बनाए रखें, आज के जो एक चुटकी नुस्खे हैं उससे मुझे दीजिए अब इजाज़त और सुनेंगे सीधे अगला गाना।
1: एक चुटकी नुस्खे

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने, आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।
2: आज के दिन
3: नॉनस्टॉप गपशप में अब बारी है आज के दिन की। जी, आज की बात जो है और उसके बारे में बहुत ही, आज का दिन जो है सिर्फ बारिश की बात नहीं है, काफी इम्पोर्टेंट डे है वो हमारे लिए। अच्छा दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की मधुर आवाजें, पत्तों से छन कर आती धूप और हवा में ताजगी की ऐसी खुशबू जो मन को सुकून दे। वाह, है ना खूबसूरत नज़ारा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये खुद सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। और इसी ज़रूरत को याद दिलाने के लिए हर साल 22 जून को मनाया जाता है विश्व वर्षा वन दिवस। दोस्तों, वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट को धरती के फेफड़े कहा जाता है। ये जंगल हमारी हवा को साफ रखते हैं, बारिश के चक्र को बनाए रखते हैं और लाखों जीव जंतुओं का घर भी है। अब जरा सोचिए, अगर ये जंगल ना रहे तो क्या होगा? मौसम का संतुलन बिगड़ेगा, तापमान बिगड़ेगा, कई जीव जंतु हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ियां उसे हरियाली को सिर्फ तस्वीरों में देखेगी। अक्सर हम सोचते हैं कि जंगल बचाना तो सरकारों की बड़ी संस्थानों का काम है, लेकिन सच ये है कि बदलाव की शुरुआत हमारे छोटे छोटे कदमों से ही होती है। एक पेड़ लगाना, कागज की बचत करना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना भी बहुत बड़ी बात है। तो आज विश्व वर्षा वन दिवस पर एक छोटा सा वादा करते हैं, सिर्फ प्रकृति से नहीं, से लेने का नहीं, उसे कुछ लौटाने का भी। क्योंकि जब जंगल मुस्कुराएंगे तभी धरती मुस्कुराएगी और जब धरती मुस्कुराएगी तभी हमारी जिंदगी भी खूबसूरत बनेगी। तो आज के दिन चलिए हरियाली को अपनाने का वादा करते हुए खुद से बढ़ते हैं आगे। सुन लेते हैं हमारा अगला गाना जिसे सुप्रिया जी ने हावड़ा से रिक्वेस्ट किया है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: चलते चलते करीबन कार्यक्रम के आखिर में पहुंच चुके हैं और आज के दिन में हमने बात की वर्षा वन के बारे में। अब एक और दिन की बात करते हैं। अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए पूरी दुनिया की परवाह किए बिना जीने का मौका मिले तो क्या आप वही करेंगे जो आपका दिल करता है? सोचिए जरा, हम में से कितने लोग हैं जो हर दिन किसी न किसी की उम्मीदें, राय और फैसलों के हिसाब से खुद को बदलते रहते हैं। कभी लोग क्या कहेंगे का डर, कभी दूसरों जैसा बनने की कोशिश। लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। आज है इंटरनेशनल बीइंग यू डे, यानी ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि दुनिया में सबसे जरूरी व्यक्ति बनने का नहीं बल्कि खुद होने की जरूरत है। दोस्तों, हर इंसान की अपनी पहचान होती है। किसी की मुस्कान उसकी ताकत होती है, किसी का आत्मविश्वास, किसी की सादगी और किसी की रचनात्मक सोच। हमारी यही अलग अलग खुशियां इस दुनिया को खूबसूरत बनाती है। जरा सोचिए, अगर सारे फूल एक जैसे होते, सारे रंग एक जैसे होते तो क्या प्रकृति इतनी सुंदर लगती? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही आपकी अलग पहचान, आपकी अलग सोच और आपका व्यक्तित्व ही आपको खास बनाता है। तो आज खुद से एक वादा कीजिए, खुद की तुलना दूसरों से कम करेंगे, अपनी खूबियों को पहचानेंगे और अपनी असली पहचान पर गर्व करेंगे। याद रखिए, दुनिया में आप

से बेहतर कोई दूसरा आप नहीं हो सकता। तो आप मुस्कुराइए, अपने सपनों को अपनाइए और सबसे ज़रूरत की बात, खुद को स्वीकार कीजिए। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि आप किसी को कॉपी नहीं बल्कि अपनी कहानी को ओरिजिनल किरदार में हैं। तो मैं आपके दोस्त और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा एफएम चैनल एफएम रेडियो। और आगे बढ़ते हुए सुनेंगे हमारा अगला गाना भी केके और शिल्पा राव की आवाज़ में। इनफैक्ट दो बैक टू बैक गाने हो जाए क्योंकि जाने का वक्त हो चला है दोस्तों। और तो मैं सोच रही हूँ कि बैक टू बैक दो ज़बरदस्त गाने आपको सुना दिया जाए। खुदा जाने सबसे पहले सुनेंगे और उसके बाद फिर शेखर रविजयानी की आवाज़ में वेली, जी हाँ, स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर से। तो चलिए और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में वापस आपसे 11:25 पर। आज लुआ गई उनकी याद लेकर, आनंद बख्शी की यादों को लेकर एफएम गोल पर। तब तक के लिए 107 एफएम रेनबो है, आप सुनते रहिए, एंजॉय करिए। थोड़ी देर में सुनेंगे अगला कार्यक्रम यहाँ भी।

गुड आफ्टरनून, नमस्कार, सभी का स्वागत है 107 FM रेनबो पर। आरजे अंकित आपके साथ और मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम लेके तीन का तड़का। तो दोपहर के दोस्तों 3:05 हो चुके हैं। आपका दोस्त अंकित यहाँ पर लेकर आया हूँ धमाकेदार ट्रैक्स आप लोगों के लिए, ताकि ये दोपहर से जो शाम आ रही है दोस्तों, ये दोपहर से शाम आपकी सुहानी हो जाए, आपका एंटरटेनमेंट मोड जो है ऑन हो जाए। और धमाकेदार ट्रैक्स लेकर तो अंकित आया ही है और एंटरटेनमेंट का तो वादा है मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, सुनते हैं पहला ट्रैक आप लोगों के लिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे गुरु रंधावा हीर की आवाज में ट्रैक तानिश बख्शी का, तो संगीत इंदिवर के थे बोल। और दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने योग के जरिए दिया हेल्दी एंजिंग का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को शांत और तनाव मुक्त जीवन जीने में सहायक बताते हुए कहा कि हमारा लक्ष्य 50 की उम्र में 30 साल से ज्यादा ऊर्जावान होने का होना चाहिए। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुख्य समारोह का आयोजन रविवार को यहाँ रेड रोड पर आयोजित किया गया था।

है जवानी तो इश्क होना है दोस्तों। सुन रहे हैं तो उस मूवी से हार्डी सांधू और किरण बाजवा की आवाज़ में ट्रैक, तनिष बख्शी, रोमी अंजलि, गिल मच्छराई का कंपोजिशन, लिरिसिस्ट रोनी अंजलि और गिल मच्छराई। और दोस्तों और एक आपको दे दूं मैं मैसेज, 3 स्वदेशी निर्मित जहाज राष्ट्र को समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के लिए 3 स्वदेशी निर्मित उद्योगपोतों को राष्ट्र को समर्पित किया।

हाँ आ जाएंगे आपकी गली में भी। सुन रहे थे आप धनुवेद्स मनु से लहम भर हुसैनपुरी की आवाज़ में, ट्रैक कृष्णा शोलो का कंपोजिशन और बोल लिखे थे राज शेखर ने। और यूरोप के 27 देशों में 93% भारतीय एक्सपोर्ट टैक्स फ्री होने वाला है। बड़ा चेंज है दोस्तों। भारत और यूरोपीय संघ इस साल दिसंबर तक अपने लंबे समय के प्रतिष्ठित मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये समझौता फरवरी और मार्च 2027 के बीच लागू होने की संभावना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को यह जानकारी दी। मुंबई में चार्टर्ड अकाउंटेंट को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को यूरोपियन बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी। और दोस्तों 3:18 PM हो चुका है, आरजे अंकित आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा 3 का तड़का आपके अपने चैनल पर यानी 107 FM रेनबो पर। आइए बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ।

फिल्म ब्रदर्स से दोस्तों आप सुन रहे हैं चिन्मय में श्रीपदा की आवाज में। ये ट्रैक अजय अतुल का कंपोजिशन और अमिताभ भट्टाचार्य के थे बोल। और दोस्तों 11 गेंदों में जड़ा अर्धशतक सूर्यवंशी ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। भारत ए टीम के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 11 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। आज यहां श्रीलंका ए टीम ने टॉस जीतकर भारत ए को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी करने उतरी भारत ए के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की खूब खबर ली। उन्होंने मात्र 11 गेंदों पर अर्धशतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बना दिया। ये लिस्ट एक क्रिकेट का सबसे तेज अर्धशतक है, लेकिन वह लिस्ट एक क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने से चूक गए। वैभव ने 11 गेंदों में 5 चौके और 5 छक्के उड़ाते हुए अपने और एक क्रिकेट इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने कौशलत्या वीरत्ने के

रिकॉर्ड को तोड़ दिया। वह 9वें ओवर में आउट हुए। उन्होंने 29 गेंदों में 10 चौके और 8 छक्कों की मदद से 94 रनों की पारी खेली। भाई दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी गीत की तरफ।

फिल्म किक से दोस्तों आप सुन रहे थे, ये ट्रैक मोहम्मद इरफान की आवाज़ में, कंपोजिशन हिमेश रेशमिया की और बोले के थे मयूर पुरी ने। दोस्तों ये हमारा आखिरी गीत था, इसी के साथ आपका दोस्त अंकिल लेकर इजाजत। और दोस्तों हम अब हम बढ़ेंगे एक विशेष कार्यक्रम की ओर, NCERT का सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए, और मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा रेनबो पर ठीक 7:02 पर। तब तक के लिए नमस्कार और थोड़ी देर के लिए दीजिए इजाज़त।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तामुरिया, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है, जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं, इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic

hindi.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताज़ा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्जित स्वर हैं तथा अवरोह में सातों स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में पांच और अवरोह में सात स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह।

अब प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदियां बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
2: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई। वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही। लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनाया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
0: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
1: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था, वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था, वो जहां चाहता वहां जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

गुड इवनिंग, नमस्कार और सभी का स्वागत है 107 FM रेनबो पर। आरजे अंकिता आपके साथ और दोस्तों मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम लेके छायालोक। और छायालोक में दोस्तों आज हम सुनेंगे सुरों की महफिल, यानी अगले 2 घंटे तक यानी 9 बजे तक मैं रहने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और कहा जाता है कि अगर शब्द दिल की आवाज है तो संगीत उसकी धड़कन। जब किसी गीतकार की कल्पना, संगीतकार की सोच और गायक की आवाज एक साथ मिलती है तब जन्म लेता है एक ऐसा गीत जो सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं रहता बल्कि हमारी जिंदगी की यादों का हिस्सा बन जाता है। आज की महफिल में हम सुनेंगे नए दौर के कुछ चुनिंदा बॉलीवुड गीत और जानेंगे कि इस गीतों के पीछे छिपी है रचनात्मक सोच क्या है। बात करेंगे संगीतकारों की, गीतकारों की और उन सुरों की जिन्होंने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई। तो आइए सुरों की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं।

दोस्तों, जब भी पिछले कुछ वर्षों के सबसे लोकप्रिय प्रेम गीतों का जिक्र होता है तो केसरिया का नाम जरूर लिया जाता है। संगीतकार प्रीतम की खासियत रही है कि वे भारतीय लोक धुनों और आधुनिक ऑर्केस्ट्रेशन का ऐसा मेल तैयार करते हैं जो हर वर्ग के श्रोताओं को पसंद आता है। वहीं गीतकार अमिताभ भट्टाचार्य ने प्रेम को केसरिया रंग के माध्यम से व्यक्त करके एक नया प्रतीक दिया है। गीत का मुखड़ा सुनते ही पूरा माहौल जैसे प्रेम के रंग में रंग जाता है।

दोस्तों, आज के दौर में सचिन जिगर की जोड़ी उन संगीतकारों में शामिल है जो हर फिल्म के विषय के अनुसार अपना संगीत बदल लेते हैं। अपना बनाले में उन्होंने शोर नहीं बल्कि सुकून पैदा करने वाली धुन बनाई। यही कारण है कि गीत सुनते समय शब्द और संगीत दोनों बराबर महसूस होते हैं। अमिताभ भट्टाचार्य के सरल लेकिन प्रभावशाली बोल और इस गीत को और भी आत्मीय बना देते हैं। तो सुनते हैं

फिल्म भेड़िया से दोस्तों आप सुन रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ट्रैक, सचिन जिगर का कंपोजिशन और अमिताभ भट्टाचार्य के थे। किसी भी रोमांटिक ट्रैक की असली पहचान यही होती है कि वह सुनने वाले को अपनी कहानी याद दिला दे। तेरे वास्ते में प्रेम का इंतजार बड़े सहज शब्दों में किया गया है, धुन में कहीं भी अनावश्यक शोर नहीं। शायद यही वजह है कि यह गीत शादी ब्याह से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह सुनाई देता। आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म जरा हट के जरा बचके से दोस्तों आप सुन रहे थे एक ट्रैक वरुण जैन शादा फरीदी अल्तमाश फरीदी की आवाज में, कंपोजिशन सचिन जिगर की और बोल अमिताभ भट्टाचार्य। दोस्तों अगर पिछले कुछ वर्षों में किसी युवा संगीतकार ने पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है तो वो है अनिरुद्ध रविचंद्र। उनके संगीत ने दक्षिण भारतीय ऊर्जा भी है और हिंदी फिल्म संगीत की मेलोडी भी। चलिया इसका बेहतरीन उदाहरण है। गीतकार कुमार ने बेहद सरल शब्दों में प्रेम की भावनाओं को व्यक्त किया है, इसलिए यह गीत पहली बार सुनने पर ही अपना सा लगता है। तो लीजिए

फिल्म डंकी से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे, बहुत ही प्यारा सा ट्रैक, प्रीतम का कंपोजिशन, इरशाद कामिल के थे बोल। हर रिश्ता एक रंग नहीं होता, उसमें विश्वास का रंग भी होता है, इंतजार का भी, अपनापन भी, और कभी कभी दर्द भी। शायद इसी सोच को सतरंगा से सुरों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। इसकी धुन धीरे धीरे मन में उतरती है और अरिजीत सिंह की आवाज इसे और भी भावपूर्ण बना देती है, तो सुनते हैं।

दंजरी पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।

फिल्म एनिमल से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे एक बहुत ही प्यारा सा गीत, श्रेयस पुरानिक का संगीत, सिद्धार्थ गरिमा के बोल। दोस्तों संगीत की सबसे बड़ी खूबी उसकी सादगी होती है। राम संपत हमेशा से अलग अलग संगीत के लिए जाने जाते हैं। सजनी में उन्होंने लोक संगीत की खुशबू को बरकरार रखते हुए आधुनिक संगीत संयोजन को सुंदर प्रयोग किया। यही वजह है कि गीत सुनते समय एक अपनापन महसूस होता है। लीजिए सुनते हैं।

फिल्म लापता लेडीज से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज में ट्रैक, राम संपत का संगीत, प्रशांत पांडे के बोल। हर दौर का अपना संगीत होता है। आज का संगीत तेज भी है, प्रयोग धर्मी भी है और तकनीक से भरपूर भी है, लेकिन जब किसी गीत में मधुर धुन शामिल हो जाए तो वो लंबे समय तक याद रहता है। नैना इसी तरह का एक गीत है जिसने आधुनिक संगीत के बीच अपनी अलग पहचान बनाई। तो पेश है

फिल्म क्रू से दोस्तों आप सुन रहे थे दिलजीत दोसांझ की आवाज में ट्रैक, बीच में रैप था बादशाह का, संगीत से सजाया था राज रंजौत ने, बोल से सवारा था राज रंजौत और बादशाह ने। 7:33 PM हो चुका है दोस्तों, आरजे अंकित आपके साथ शो चल रहा है छायालोक, और छायालोक में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सुरों की महफिल के बारे में। सुरों की महफिल में मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिक्स के बारे में, उन म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में और लिरिसिस्ट के बारे में रहने वाला हूँ इस कार्यक्रम में आप लोगों के साथ। 9 बजे तक लेकर आया हूँ कुछ धमाकेदार ट्रैक्स आप लोगों के लिए। दोस्तों किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है, अगर हो तुम, इसी एहसास को बहुत खूबसूरती से व्यक्त करता है। गीत की धुन शांत है, शब्द सरल है और पूरी प्रस्तुति दिल को सुकून देती है। कभी कभी संगीत जोर से नहीं बोलता, बस चुपचाप दिल में उतर जाता है और यही इस गीत की सबसे बड़ी खूबी है।

मिस्टर एंड मिसेस माइस दोस्तों जुबिन नौटियाल की आवाज में सुन रहे थे ये ट्रैक कंपोजिशन तनिष बख्शी की लिरिसिस्ट कौशर मुनीर के। दोस्तों संगीत की दुनिया में हर साल नए कलाकार आते हैं लेकिन जो गीत दिल को छू जाए वही समय की कसौटी पर खरा उतरता है। आज के संगीतकार तकनीक का भरपूर उपयोग करते हैं फिर भी भारतीय सुरों और शब्दों की मिठास को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि आज का संगीत भी नई पीढ़ी के साथ साथ उम्र के श्रोताओं को पसंद आता है। आज का संगीत केवल सुनने तक सीमित नहीं है बल्कि वह सोशल मीडिया डांस और युवाओं की अभिव्यक्ति का हिस्सा भी बन चुका है। तौबा तौबा इसकी एक शानदार मिसाल है। तेज रिदम आकर्षक धुन और अलग अंदाज ने इस गीत को बहुत कम समय में लोकप्रिय बना दिया। तो अब सुनते हैं।

0: न्यूज दोस्तों, करण औजला की आवाज में सुन रहे थे ट्रैक्स। कंपोजिशन लिरिसिस्ट दोनों ही थे करण औजला के। दोस्तों कुछ गीत ऐसे होते हैं जो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने के साथ साथ अपनी अलग पहचान भी बना लेते हैं। आई नहीं में लोक धुनों की झलक और आधुनिक संगीत संयोजन का सुंदर संतुलन सुनाई देता है। यही प्रयोग इस गीत को अलग बनाता है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं।
1: वो नहीं आने वाली, आने वाली। वो बेवफा छलावा थी।

फिल्म स्त्री 2 से दोस्तों पवन सिंह, शिमरन चौधरी और दिव्या कुमार की आवाज में सुन रहे थे ट्रैक। सचिन जिकर का कंपोजिशन, लिरिसिस्ट अमिताभ भट्टाचार्य। ऊर्जा, जोश और दमदार धुन, ये तीनों बातें अगर एक साथ मिल जाए तो एक ऐसा गीत बनता है जो लंबे समय तक याद रहता है। अंगारों भी ऐसा ही गीत है। इसकी प्रस्तुति में लोक संगीत का रंग और आधुनिक बिट्स की शानदार मेल सुनाई देता है। तो आइए सुनते हैं दोस्तों।

फिल्म पुष्पा 2 से दोस्तों श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक देवी श्री प्रसाद का कंपोजिशन और लिरिसिस्ट राकिब आलम के। दोस्तों रोमांटिक ट्रैक की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी होती है। अखियां गुलाब में यही सादगी और मधुरता सुनाई देते हैं। गीत की धुन को इस तरह तैयार किया गया है कि वह पहली बार सुनने पर ही मन में बस जाती है। यही एक सफल धुन की पहचान होती है। आइए सुनते हैं

संग एंड कंपोज बाय मित्राज और लिरिसिस्ट भी थे मित्राज के, सुन रहे थे आप ये ट्रैक तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से। दोस्तों संगीतकार विशाल शेखर की जोड़ी हमेशा नए प्रयोग के लिए जानी जाती है। उनकी धुनों में आधुनिकता भी होती है और मधुरता भी। इश्क जैसा कुछ इसी सोच का एक खूबसूरत उदाहरण है। इस गीत में रोमांस को एक नए संगीतात्मक अंदाज में प्रस्तुत किया गया है, तो सुनते हैं।

फिल्म फाइटर से दोस्तों आप सुन रहे थे विशाल शेखर स्वीपर और मेलोडी की आवाज में ट्रैक संगीत से सजाया था विशाल शेखर ने और बोल से सफारा था कुमार ने। दोस्तों संगीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उम्मीद और विश्वास का भी माध्यम है। दुआ ऐसा ही गीत है जो सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का संदेश देता है। इसकी धुन शांति का एहसास कराती है और शब्द मन में नई ऊर्जा भर देती है।

0: दोस्तों सुन रहे थे आप आर्टिकल 370 से जुबिन नौटियाल और शाश्वत सचदेव की आवाज में। यह गीत संगीत से सजाया था खुद शाश्वत सचदेव ने और बोल से सवारा था कुमार ने।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: जी हाँ दोस्तों, मन की बात सुनना ना भूले और ये भी ना भूले कि दोस्तों मैं आपको 8 बजे लिए चलूंगा न्यूज रूम में, जहां से आप सुनेंगे 2 मिनट के लिए न्यूज, यानी 8 बजे से 8:02 तक, और फिर वापस मैं लौटूंगा 8:02, जहां पर सुरों की महफिल का कार्यक्रम रहेगा जारी। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए 107 FM रेनबो पर। RJ अंकित है आपके लिए यहाँ बैठा, वेट कर रहा है आपके लिए।

स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत स्वागत दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सुरों की महफिल में। मैं हूं आपका दोस्त अर्जन केदार। अगले कुछ मिनटों तक दोस्तों हम सुनेंगे कुछ बेहतरीन गाने आप लोगों के लिए। दोस्तों किसी भी दौर का संगीत उस समय के समाज भावनाओं और सपनों का आईना होता है। आज के गीतों में आधुनिक तकनीक है, लेकिन साथ ही भारतीय संगीत की आत्मा भी मौजूद है। यही वजह है कि नए दौर का बॉलीवुड संगीत दुनिया भर में श्रोताओं तक पहुंच रहा है। तो आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों जब किसी फिल्म में भावनाओं को संगीत के माध्यम से व्यक्त करना होता है तो धुन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जाने तू में प्रेम की मासूमियत और इंतजार की मीठा सुनाई देती है। इसकी धुन धीरे धीरे मन में उतरती है और लंबे समय तक साथ रहती है। तो सुनते हैं।

फिल्म छावा से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे हैं। तो ये ट्रैक है यार रहमान का कंपोजिशन इरशाद कामिल के बोल। हर संगीतकार की कोशिश होती है कि उसकी धुन पहली बार सुनते ही श्रोताओं के दिल में उतर जाए। जोहरा जबी में रोमांस, लय और आधुनिक संगीत का बेहतरीन मेल देखने को मिलता है। इसकी प्रस्तुति इसे एक ताजगी भरा अनुभव बनाती है। तो पेश है

फिल्म सिकंदर से दोस्तों नकर्शा से इस देवने के लेकर आए थे ट्रैक प्रीतम का कंपोजिशन शमीर और दानिश शाबरी के बोल। दोस्तों कुछ गीत फिल्मों में से आगे निकलकर लोगों को अपनी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। रांझा उन्हीं गीतों में से एक है। जसलीन रॉयल की धुन से सादगी है लेकिन भावनाओं की गहराई भी है। अनविता दत्त के शब्द और बी प्राक तथा जसलीन रॉयल की आवाज ने इस गीत को एक आधुनिक क्लासिक बना दिया है। आइए सुनते हैं।

शेर शाह से दोस्तों बी प्राग जसलीन रॉयल और रोमी लेकर आए थे। ये गीत जसलीन रॉयल का कंपोजिशन लिरिसिस्ट अनविता दत्त के। प्रेम की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति अक्सर सादे शब्दों में होती है। माया मेनू इसी एहसास का गीत है। सचेत परंपरा की मधुर धुन और शैली के सरल लेकिन गहरे शब्द इसे दिल के बहुत करीब ले आते हैं। तो सुनिए है।

फिल्म जर्सी से दोस्तों सचित टंडन की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक, कंपोजिशन सचित परंपरा की और लिरिसिस्ट थे शैली। दोस्तों रिश्तों में भरोसा और साथ सबसे बड़ा उपहार होता है, मेरे यारा उसी विश्वास की कहानी कहता है। इसकी धुन शांत है

फिल्म सूर्यवंशी से अरिजीत सिंह नीति मोहन की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक ट्रैक कंपोजिशन कौशिक गुड्डू आकाश की लिरिसिस्ट रश्मि विराग के। कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें रात की खामोशी में सुनने का अपना ही आनंद होता है। फिर ना ऐसी रात आएगी मैं प्रीतम ने बेहद सुकून देने वाला धुन तैयार किया है। अमिताभ भट्टाचार्य के भावपूर्ण शब्द इस गीत को और भी खास बना देते हैं। आइए सुनते हैं।

फिल्म लाल सिंह चड्ढा से दोस्तों अरिजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा ट्रैक आप सुन रहे थे दोस्तों, कंपोजिशन प्रीतम की, लिरिसिस्ट शमिता भट्टाचार्य। दोस्तों हर प्रेम कहानी का एक ऐसा पल होता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं और संगीत दिल की बात कह देता है। रब्बा जानदा में यही एहसास सुनाई देता है। इसकी धुन सरल है और भावनाएं गहरी। लीजिए सुनिए।

आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं ना, उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।

0: फिल्म मिशन मजनू से जुबिन नौटियाल की आवाज में आप सुन रहे थे ट्रैक तनिष बख्शी का कंपोजिशन शब्बीर अहमद के थे बोल।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: दोस्तों बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सुरक्षा योजना, इसके तहत देश की 80 करोड़ से अधिक जरूरतमंद नागरिक की प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मुफ्त अनाज, गेहूं और चावल प्रदान किया जाता है। गरीबों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना अंत्योदय अन्य योजना और प्राथमिकता वाले परिवार के लाभार्थी हैं। मुफ्त राशन योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलो खाद बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। 1 जनवरी 2024 से इस योजना को अगले 5 वर्ष यानी 2029 तक के लिए मुफ्त खाद्यान्न वितरण हेतु बढ़ा दिया गया है।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
0: दोस्तों 8:30 PM हो चुका है आरजे अंकित आपके साथ, कार्यक्रम चल रहा है छायालोक, और छायालोक के अंतर्गत दोस्तों हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं सुरों की महफिल, जहां पर मैं बात कर रहा हूं कुछ ऐसे गानों के बारे में, कुछ ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में, कुछ ऐसे लिरिसिस्ट के बारे में सुना रहा हूं उन्हीं के फिल्मों से गीत आपके लिए। रहूंगा 9 बजे तक आपके साथ, और अब बारी है आज के अगले गीत की तरफ। दोस्तों संगीत की कोई सीमा नहीं होती, ये भाषा उम्र और दूरियों से परे जाकर दिलों को जोड़ता है। एक अच्छी धुन हमें मुस्कुराने की वजह देती है, एक अच्छा गीत हमें हमारी यादों से मिला देता है, और एक खूबसूरत आवाज उन पलों को हमेशा के लिए सजा देती है। आज की इस महफिल में हमने कई सारे अलग अलग फिल्मों के गीतों के माध्यम से जाना कि कैसे संगीतकार अपनी कल्पना को सुर देते हैं, गीतकार उसे शब्द देते हैं, और गायक अपनी आवाज से उसे अमर बना देते हैं। इन्हीं खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं आज की महफिल का अगला गीत।

फिल्म केसरी से दोस्तों अरिजीत सिंह और आशीष कौर लेकर आए थे ट्रैक, तनिष बागची का कंपोजिशन और बोल भी लिखे थे तनिष बागची ने खुद। प्रेम जब शब्दों से आगे बढ़कर एहसास बन जाता है तब ऐसे गीत जम लेते हैं। रांझण में संगीत की सादगी और गायकी की गहराई श्रोताओं को अपने साथ बहा ले जाती है। यह गीत इस बात का प्रमाण है कि कम वाद्य यंत्रों के साथ भी एक खूबसूरत धुन रची जा सकती है। आइए सुनते हैं।

और जी आवाजें सुन रहे थे गीत मृदंगा संगीत सैयद कादरी के थे बोल। भारतीय विवाह केवल एक रस्म नहीं बल्कि भावना का उत्सव होता है। कुड़माई उसी उत्सव की खूबसूरत संगीतमक प्रस्तुति है। संगीतकार प्रीतम ने पारंपरिक पंजाबी लोकधुनों को आधुनिक ऑर्केस्ट्रन के साथ सजाया है, जबकि अमिताभ भट्टाचार्य ने रिश्तों की गरिमा और अपनापन शब्दों में पिरोया है। तो आइए सुनते हैं।

दोस्तों सुन रहे थे फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से ये गीत शाहिद माल्या की आवाज में, प्रीतम का संगीत अमिताभ भट्टाचार्य के थे बोल। और अब बारी आज के इस विशेष दौर की आखिरी गीत की। कुछ गीत अपनी ताजगी, जोश और युवा ऊर्जा के कारण तुरंत पसंद किए जाने लगते हैं। सोनी सोनी ऐसा ही एक गीत है, संगीतकार रोचक कोहली ने इस आधुनिक बिट्स के साथ तैयार किया है। और वहीं गुरप्रीत सिंह सैनी और गौतम जी वर्मा के बोल इसे एक फ्रेश और रोमांटिक अंदाज देते हैं। तो आइए मुस्कुराइए, सुनिए फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड का ये शानदार गीत। और इसी गीत के साथ आपका दोस्त अंकित ले लेगा इजाजत। मिलूंगा फिर आप लोगों से मैं कुछ दिनों बाद, तब तक लिए बाय, टेक केयर। सुनते रहिए 107 FM रेनबो और चलिए गुड नाइट।